0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
1: बिंदास चांदनी रातें
0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।
2: जबरदस्त

106.3 FM, Gio Bendaz. Abusunie.

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. जिया बिंदास. अब सुनिए.

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। फुटबॉल बाउंड्रीज नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता। इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया। अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया। नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है, और यही है द हिवारी इनिशिएटिव, जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। कल्चर ट्रैवल्स, फुटबॉल कनेक्ट्स, एंड हिवारी इज ब्रिंगिंग कतर टू द

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस.
3: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर.
2: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में.
3: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस. बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर, मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए.
2: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026. दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: हेलो नमस्कार, मम्मी मिया, मैं हूँ चंकी पांडे और आप सुन रहे हो मुझे रेडियो ऑलिव।

0: ओपन का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम शॉपिंग Now more rewarding. TNC apply. Sirf number one log. Sunte hain number one radio station. Radio Olive. 106.3 FM.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो पॉलर, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉल्विंग एक्सपीरियंस।
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
1: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
2: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर, मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
1: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply. Sirf number one log. Sunte hain number one radio station. Radio Olive. 106.3 FM.

listening to Radio Olive 106.3 FM. Radio Olive. Geo Binda.

एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास. फुटबॉल बाउंड्रीज नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता. इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया. अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया. नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है. और यही है द हिवारी इनिशिएटिव, जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है. Culture travels, football connects, and Hiwari is bringing Qatar to the world. Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063. Aap sun rahe hain. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.

0: भी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर, अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरेडू ऐप पर, एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू।
2: This is
3: Vani Bhanushali.
4: Hey, this is Liana
5: D'Cruz.
6: This is me, Ritik Roshan.
7: Hi, I'm Alia Bhatt.
8: Hi, I'm Vivek Anand Oberoi, and you're listening to Radio Olive, Jio Bindas.

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर, मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply. Sirf number one log. Sunte hain number one radio station. Radio Olive. 106.3 FM.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है कूल सॉन्ग।

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM. जियो बिंदास.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
3: मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो अलर्ट पे।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार.

0: सब कुछ अनबीटेबल वैल्यू में। तो इस सीजन लुक में भी टॉप अप करो। स्पेक्टेकुलर ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए आपके नजदीकी लुलू स्टोर्स में।
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है। जबरदस्त

0: खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने। जनाब खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरेडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
1: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
2: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर, मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
1: ऑफर वैलिड टिल 30 June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टरकार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।
3: ससिकाल जी, मैं हां हरभजन मान और तुसी सुन रहे हो कतर दा नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन, रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास. कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Radio Olive पर आने वाला गाना Cool Song of the Hour.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है
3: Cool Song.

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: Hi everyone, this is Benny Deol here.
3: Benny Deol here.
2: Olive Radio 106.3. Jiyo Bindas.
3: Olive.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर, मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।

your happiness frequency. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो पॉलर, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
1: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
2: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर, मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
1: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरेडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू.

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدنا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
1: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Hi there friends, this is DJ Suketu. DJ Suketu. You're listening to Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindas.
5: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio.

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। फुटबॉल बाउंड्रीज नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता। इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया। अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया। नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है और यही है द हिवारी इनिशिएटिव, जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। कल्चर ट्रैवल्स, फुटबॉल कनेक्ट्स एंड हिवारी इज ब्रिंगिंग कतर टू द

0: छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो पॉलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस.
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर.
1: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में.
2: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस. बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए.
1: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026. दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.

0: खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने। जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर ऑफर के साथ।
1: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश।
0: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप।
1: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और पाइए स्पेक्टाकुलर offer.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर, मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। फुटबॉल बाउंड्रीज नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता। इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया। अपने ट्रेडिशनल कतरी थोब में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया। नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है और यही है द हिवारी इनिशिएटिव, जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। कल्चर ट्रैवल्स, फुटबॉल कनेक्ट्स एंड हिवारी इज ब्रिंगिंग कतर टू द वर्ल्ड।

0: बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरेडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न। अरे यार, हॉलिडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्डन समर के साथ आइए, फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस, प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर। With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Hi guys, this is Jonita Gandhi.
4: Radio Olive, I'm the number one.
3: You are listening to me on Radio Olive. Gio Bindas.
4: Radio Olive, I'm the number one.
5: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस.
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर.
1: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में.
2: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस. बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए.
1: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026. दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
2: सोचो, अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स। कमर्शियल बैंक, सेव and win.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।
0: Cool song.

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफ स्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर, मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30 June 2026। दोहा बैंक लूलू मास्टरकार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। टीएनसी अप्लाई।
2: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Fresh fish on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alcohol.
2: Hi, this is Amitabh Bachchan and you're listening to

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस.
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर.
1: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में.
2: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस. बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए.
1: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026. दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
3: Football boundaries नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता. इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया. अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया. नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है. और यही है द हिवारी इनिशिएटिव, जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है. कल्चर ट्रैवल्स, फुटबॉल कनेक्ट्स एंड हिवारी इज ब्रिंगिंग कतर टू द

Radio Olive, your happiness frequency. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
1: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
2: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
1: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
2: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Serve with pride. Danadal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif, Alkhor.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। क्या आप एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर हैं? तो अब अपनी स्किल्स को प्रूव करने का वक्त आ गया है। हासिल कीजिए एक ऑफिशियल कहरामा सर्टिफिकेशन, पाइए अपना लाइसेंस जो आपके लिए कतर में नए जॉब अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देगा, एक ऐसे सर्टिफिकेट के साथ जो आपकी ब्रिलियंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का कमिटमेंट शो करता है। इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए, अभी रजिस्टर कीजिए और बन जाइए अपने फील्ड के टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स और टेक्नीशियंस में से एक। बस विजिट कीजिए कहरामा की वेबसाइट www.km.qa और खुद को रजिस्टर कीजिए। सर्टिफाइड बनिए, सर्टिफाइड के साथ बनिए।
2: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
3: हाय, दिस इज विपाशा बासु।
4: हाय, आई एम राजकुमार राव।
5: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
6: हाय, दिस इज दिशा पार्डी।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑल 106.3 FM।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
3: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
2: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
3: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
2: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।

वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

देखो इतनी जल्दी तो वीकेंड नहीं आता जितनी जल्दी हमारे फोन में अपडेट आ जाता है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिवर, मैं हूँ आपकी कशिश और शो आपके लिए टेक टॉक लेकर आ गई हूँ। एंड देखिए बहुत सारी बातचीत जो है वो हम करने वाले हैं आज अपने शो टेक टॉक पे। सो आपको जो है स्टे ट्यून रहना है, क्या कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, क्या कुछ गेम्स जो है वो न्यू रिलीज हुए हैं और कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं टेक्नोलॉजी के बारे में जो आपको जानना बहुत बहुत बहुत जरूरी है, इन सब पर बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा सब्र रखो, काम डाउन हो जाओ, वीकेंड है, आराम आराम से एंजॉय करेंगे आपकी कशिश के साथ। सो स्टे ट्यून रहो और कहते रहो जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो पॉलिट योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
1: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
2: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफ स्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर, मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
1: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
3: Hi, this is Air Rahman.
4: Air Rahman.
3: Radio. Listen to my songs on 106.3 Radio Olive.
4: Jio Bindas.
5: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
6: I'm in number one. Radio Olive.
7: TNC.
8: The Tech Show.
9: This is something.

वैसे तो इस बारे में मैंने अपने शो लाइफ मस्त है में भी बात करी थी, लेकिन अगर हम टेक टॉक की बात कर रहे हैं तो इस बारे में बात कैसे ना हो। हाँ जी, वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो टेक टॉक आपके लिए ले आई हूँ। एंड यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात करते हुए, आई एम डैम श्योर आपको कई बार ऐसा लगा होगा अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है कि यार इसे चार्ज करने में तो बहुत टाइम लगता है। एंड मी पर्सनली, मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैं अपनी घड़ी, अपना फोन, अपना टैबलेट सब चार्ज करना भूल जाती हूँ। एंड इंडिया में भी मेरे पास एक ईवी है जो मेरा भाई मेरे लिए डेली चार्ज करता था। तो मैं जानती हूँ आपका दुख अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। पेट्रोल भराना, फ्यूल भराना बहुत आसान लगता है कि बस पेट्रोल पंप पे जाओ एंड उनसे बोलो भर देंगे यार, मतलब मैक्सिमम 10 मिनट लगते। लेकिन अब ईवीज में भी जो है एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है जहां पर आप अब जितना देर आपको पेट्रोल भराने में लगता है, फ्यूल भराने में लगता है, बस उतना ही टाइम आपकी गाड़ी को फुल चार्ज करने में भी लगेगा। हाँ जी, एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी आ गई जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी रैपिड चार्ज कर पाएंगे एंड उनकी जो बैटरी है वो जीरो से फुल जो है वो कुछ ही मिनट में हो जाएगी। सो बस अब बस होप करिए कि आपकी गाड़ी में भी अपडेट जल्दी से जल्दी आ जाए। एंड बाकी देखिए, टाइम सबसे कीमती है, फ्यूल तो रेट ऊपर नीचे होता रहता है। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में। अमेजिंग वाले गाने आपके रेडियो सेट्स पर आ रहे हैं, सो स्टे ट्यून्ड रहो और कहते रहो जियो बिंदास।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न. अरे यार, हॉलिडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन. फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्डन समर के साथ आइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस. प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस. और सुनो, देयर इज मोर. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
0: Football boundaries नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता. इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया. अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया. नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है. और यही है द हिवारी इनिशिएटिव, जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है. कल्चर ट्रैवल्स, फुटबॉल कनेक्ट्स एंड हिवारी इज ब्रिंगिंग कतर टू द वर्ल्ड. Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

पहले मुझे जो है सिपर लेने का चस्का चढ़ा हुआ था, लेकिन अब मुझे वो फ्लिप वाला बारबी फोन चाहिए। हाँ जी, वेलकम बैक, मैं हूँ आपकी कशिश, टेक टॉक शो आपके लिए वापस लेकर आ गई हूँ। एंड मेरा जो है दिमागी संतुलन थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है और मेरी चाहतें भी बढ़ती जा रही हैं। मैं दिन ब दिन कुछ वियर्ड चीज की डिमांड अपने पापा के सामने रख देती हूँ, एंड पापा कहते हैं कि तुम कतर में हो और तुम जो है सक्षम हो सब लेने के, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार ये स्टूपिड चीजें मैं अपने पैसे से क्यों लूं, पापा गिफ्ट कर दें तो कितना बढ़िया होगा। अब मैं बात कर रही हूँ फोल्डेबल फोन की या फ्लिप फोन की। सो एक बारबी वाला फ्लिप फोन जो है वो आपने देखा ही होगा, अभी सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है, एंड लोग ऐसे फोन्स को यूज कर रहे हैं अपने मेन फोन से जो है अपना एडिक्शन हटाने के लिए। कल भी हमने इस पे बात की थी, लेकिन अब एक रिसर्च आई है जिसमें ये कहा गया है कि फ्लिप फोन जो है वो फ्यूचर है। अब नियरली हर हाथ में हमें फ्लिप फोन जो है वो देखने को मिल जाएगा। फोल्डेबल फोन जो है वो अब ट्रेंड में आने वाले हैं। मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा, मुझे तो क्यूट स्टफ से मतलब है। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो पॉलर, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार।

0: सब कुछ अनबीटेबल वैल्यू में। तो इस सीजन लुक में भी टॉप अप करो। स्पेक्टेकुलर ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए आपके नजदीकी लूलू स्टोर्स में।
1: J-E-C-A.

एक टाइम पे कुछ ऐसे डिवाइसेस थे जो हमें ना काफी अपडेटेड लगा करते थे, लेकिन अब वक्त के साथ वो ना पुराने होते जा रहे हैं, ऐसा मुझे फील होता जा रहा है। हाँ जी, वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑल पर। मैं हूँ आपकी कशिश और शो आपके लिए टेक टॉक लेकर आ गई हूँ। एंड जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, कुछ कुछ अपडेटेड डिवाइसेस जो है वो पुराने होते जा रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ हमारी ईयरबड्स की, मुझे याद है मैंने अपने मम्मी पापा से कितना ज्यादा जिद करी थी वायरलेस ईयरबड्स लेने के लिए। उस टाइम पे काफी वायरल हो रहे थे, अलग अलग कलर्स में आ रहे थे, स्लीक आ रहे थे, उसके कवर्स बहुत क्यूट क्यूट आ रहे थे, एंड मैंने बहुत ही लड़ झगड़ के वो लिए थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, स्मार्ट ग्लासेस ने जो है रिप्लेस कर दिया है ईयरबड्स को। हाँ जी, अब ये जो है गाने सुनने के लिए भी स्मार्ट ग्लासेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड साथ में एक और एड ऑन फीचर अगर मैं इन ग्लासेस का बताऊं तो वो ये है कि आप इसमें जो है चलते चलते मैप्स भी देख सकते हो। यानी अब आपको अपने चश्मे की ग्लासेस पर जो है लाइव स्ट्रीट व्यू जो है मैप्स जो है जैसे आप अपने फोन की स्क्रीन पर देखते हो वैसे देखने को मिल जाएंगे। बताइए यार, 106.3 रेडियो ऑल पर मैं हूँ आपकी कशिश। थोड़ी और बातचीत करेंगे लेकिन थोड़ी सी देर बाद। ये अमेजिंग वाले गाने एंजॉय कीजिए और मेरे साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर, मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टरकार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। टीएनसी अप्लाई। इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहां हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहां हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुना है। यहां सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑलिव
1: इन एसोसिएशन विद।
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर।

पहले मेरी मम्मी ना AI के बहुत खिलाफ थी. पहले वो कहती थी कि अपनी फोटोज जो है कभी पोस्ट मत करो, ये जो है AI से कोई भी कुछ भी बना देगा. लेकिन अब मेरी मम्मी खुद मुझसे कहती है कि वो जो पड़ोस वाली आंटी ने स्टेटस पे फोटो डाली थी वैसी फोटो मेरी बन सकती है क्या. हाँ जी, टेक टॉक आपके लिए लेकर आ गई 106.3 रेडियो ऑलिव पर. मैं हूँ आपकी कशिश. एंड मम्मी जो है अक्सर ऐसी बातें कर देती हैं जो मुझे कंपटीशन में डाल देता है अपनी पड़ोसी आंटी के बच्चों के, मतलब उसके कंपटीशन में. बिकॉज काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं चाहती थी कि मम्मी उससे इंट्रोड्यूस हो, लेकिन वो ऑब्वियसली व्हाट्सएप पे हो गई हैं इंट्रोड्यूस. सो अब हमें भी मम्मी को गिबली फोटोज़ बना के देनी पड़ती हैं या AI वाले एडिट्स बना के देने पड़ते हैं. लेकिन अब अगर सोशल मीडिया पे कभी भी आपको कोई AI मेड वीडियो मिलेगी तो उस पर ऊपर लेबल ज़रूर दिखेगा कि ये हो सकता है कि AI से बनी है या ये AI से ही बनी है. ऐसे स्पेसिफाई करना पड़ेगा बिकॉज अब जो है डीप फेक वीडियोज जहाँ पर इतना रिस्क जो है जनरेट कर रही थी, वहाँ पर सोशल मीडिया हैंडल्स ने अभी डिसाइड किया है कि AI कंटेंट को वो रियल कंटेंट से अलग रखेंगी. सो अब अगर आपकी मम्मी कह रही है कि आपके फेस पे पिंपल हो गए और AI से हटा दो, तो सबको पता चल जाएगा कि आपने AI का इस्तेमाल किया है. मैं हूँ आपकी कशिश 106.3 रेडियो ऑलिव पर. और अमेजिंग वाली बातचीत करेंगे लेकिन इस गाने के उस पार. सो स्टे ट्यून रहिए, कहते रहिए जियो बिंदास.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन। आप सुन रहे हैं रेडियो ऑल 106.3 FM।
3: TECAS।

पहले मेरी मम्मी ना AI के बहुत खिलाफ थी. पहले वो कहती थी कि अपनी फोटोज जो है कभी पोस्ट मत करो, ये जो है AI से कोई भी कुछ भी बना देगा. लेकिन अब मेरी मम्मी खुद मुझसे कहती है कि वो जो पड़ोस वाली आंटी ने स्टेटस पे फोटो डाली थी वैसी फोटो मेरी बन सकती है क्या. हाँ जी, टेक टॉक आपके लिए लेकर आ गई 106.3 रेडियो ऑलिव पर. मैं हूँ आपकी कशिश. एंड मम्मी जो है अक्सर ऐसी बातें कर देती हैं जो मुझे कंपटीशन में डाल देता है अपने पड़ोसी आंटी के बच्चों के, मतलब उसके कंपटीशन में. बिकॉज काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं चाहती थी कि मम्मी उससे इंट्रोड्यूस हो, लेकिन वो ऑब्वियसली व्हाट्सएप पे हो गई हैं इंट्रोड्यूस. सो अब हमें भी मम्मी को गिबली फोटोज़ बना के देनी पड़ती हैं या AI वाले एडिट्स बना के देने पड़ते हैं. लेकिन अब अगर सोशल मीडिया पे कभी भी आपको कोई AI मेड वीडियो मिलेगी तो उस पे ऊपर लेबल ज़रूर दिखेगा कि ये हो सकता है कि AI से बनी है या ये AI से ही बनी है. ऐसे स्पेसिफाई करना पड़ेगा बिकॉज अब जो है डीप फेक वीडियोज जहाँ पर इतना रिस्क जो है जनरेट कर रही थी, वहाँ पर सोशल मीडिया हैंडल्स ने अभी डिसाइड किया है कि AI कंटेंट को वो रियल कंटेंट से अलग रखेंगे. सो अब अगर आपकी मम्मी कह रही है कि आपके फेस पे पिंपल हो गए और AI से हटा दो तो सबको पता चल जाएगा कि आपने AI का इस्तेमाल किया है. मैं हूँ आपकी कशिश 106.3 रेडियो ऑलिव पर. और अमेजिंग वाली बातचीत करेंगे लेकिन इस गाने के उस पार. सो स्टे ट्यून रहिए, कहते रहिए जियो बिंदास.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस.
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर.
1: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में.
2: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस. बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए.
1: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026. दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम. शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग. टीएनसी अप्लाई.
3: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स. अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस. और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी. विजिट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे.
0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

पहले के जमाने में बच्चे जो फाइल्स बनाया करते थे, प्रोजेक्ट्स बनाया करते थे, उनका वजन उनके बैग से ज्यादा भारी होता था. एंड स्पेशली पापा को ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती थी मेरे प्रोजेक्ट सबमिट करने जाने के लिए. लेकिन अब पेन ड्राइव की या फिर मेमोरी कार्ड की किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है. एक लिंक के जरिए से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मैडम जी की यानी टीचर के जो है सिस्टम पे ट्रांसफर हो जाता है. वेलकम जी 106.3 रेडियो अलिफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश. शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ टेक टॉक, जहां पर टेक्नोलॉजिया के बारे में बातें हम करते हैं. एंड एक फैक्ट मैं आपको बताने के लिए आ गई हूँ. इस दुनिया में जितना भी डेटा है ना, उसका वजन एक स्ट्रॉबेरी से भी कम है. यानी एक जो स्ट्रॉबेरी आप अक्सर जब सुपरमार्केट जाते हैं तो खरीदने की जगह उसको साइड रख देते हैं ना, कि यार ये वाली स्ट्रॉबेरी तो बहुत हल्की लग रही है, बस उतना ही वेट है दुनिया भर के डेटा का. देखिए मतलब टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है यार. कितने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिनकी वैल्यू हमारे लिए कितनी ज्यादा है, जो हमारे लिए कितना यू नो वेटेज रखते हैं लाइफ में, उनका वजन ही नहीं है. मैं हूँ आपकी कशिश 106.3 रेडियो ऑलिव पर, और बस यही कहना चाहूंगी कि काश हमारा स्ट्रेस जो है वो भी ऐसे ही स्ट्रॉबेरी जितने वजन का होता तो हमारे दिमाग पे इतना जोर नहीं पड़ रहा होता, जैसे हमारे कंप्यूटर पे नहीं पड़ रहा है. मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, सो स्टे ट्यून्ड रहिए एंड कहते रहिए जियो बिंदास.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं, वॉरियर कहलाते हैं। यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहाँ हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑलिव
2: इन एसोसिएशन विद।
3: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
4: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
3: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर।
5: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
6: G-E-C-A.

आप लोगों के साथ बैठे बैठे बातें करते करते वीकेंड कब चला गया पता ही नहीं चला. वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर. मैं हूँ आपकी कशिश और आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे थे टेक टॉक, जहां पर टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात कर रहे थे. अब देखिए, मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि आपके साथ बातचीत करके मेरा वीकेंड जो है वो वेस्ट हुआ है. इतनी सारी बातें जो टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको बताती हूँ ना, तो मेरा नॉलेज भी बढ़ जाता है. एंड फिर जब अपने दोस्तों के साथ बैठकर ये वाली इन्फॉर्मेशन फ्लेक्स करती हूँ ना, तो मेरा ऑरा जो है वो प्लस 1000 हो जाता है. आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ ये आपके भी किसी ना किसी हेल्प जो है वो आपकी कर पाए एंड आपके काम आए. सो 3311063 ये हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर है. इस पर अगर आपके पास टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है सो वो आप हमें भेज सकते हैं और मैं उसे अपने शो में जरूर फीचर करूंगी. बाकी radioolive.qa ये जो है हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है. इस पर आकर जो है आप हमसे बातचीत जारी रख सकते हैं. हम बहुत अमेजिंग कॉन्टेंट जो है वो बना रहे हैं, वहां पर जाके वो भी देख सकते हैं. तो बस यार एक ही बात कहूंगी जाते जाते कि अपना ख्याल रखना, गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाना, खाना खाते रहना, पानी पीते रहना, सनस्क्रीन लगाते रहना एंड मुझे जो है याद करते रहना. कल मुलाकात होगी लाइफ मस्त है शो में. सो स्टे ट्यून्ड रहो 106.3 रेडियो ऑलिव पर. टाटा बाय बाय, जियो बिंदास एंड हैप्पी वीकेंड.

गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास। क्या आप एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर हैं?

0: और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
1: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
0: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर, मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
1: ऑफर वैलिड टिल 30 June 2026। दोहा बैंक, लुलू, मास्टरकार्ड, प्लैटिनम। शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।

Radio Olive, your happiness frequency.

good evening. You are listening Radio Olive 106.3 FM. This is me, Muskan, with you. Our show ka naam hai, yes, happy weekend. So, I will say ki bahut hi pyari si Friday evening ki shuruaat hum kar chuke hain. Aur main Muskan aapke saath hoon. Aur agle kuch ghanton tak na hum saath mein celebrate karenge weekend ka mood. वैसे एक बात बताइए, दुनिया भर में हर जगह पर वीकेंड जो है वो सैटरडे से स्टार्ट होता है, समवेयर फ्राइडे से, पर कतर में वीकेंड थर्सडे नाइट से ही चालू हो जाता है और हवाएं जो है बदलने लग जाती है. मॉल्स थोड़े ज्यादा बिजी लगते हैं, रेस्टोरेंट्स में वेटिंग बढ़ जाती है, कॉफी शॉप्स में लोग थोड़े और देर तक बैठते हैं और सबके दिमाग में बस एक ही थॉट चल रहा होता है, बस अब वीकेंड तो आ ही गया है. और ऑनेस्टली फ्राइडे सिर्फ एक दिन नहीं है, फ्राइडे एक फीलिंग है. कुछ लोगों के लिए फैमिली डे, कुछ लोगों के लिए स्लीपिंग डे, कुछ लोगों के लिए फुटबॉल डे और कुछ लोगों के लिए शॉपिंग डे. सो आज आप नोटिस करें तो हम पूरे हफ्ते का स्ट्रेस सिर्फ दो दिन में खुशी के लिए हैंडल कर लेते हैं. यू नो मुझे लगता है कि आपका भी कोई ना कोई आइडिया होगा इस वीकेंड को अच्छे से स्पेंड करने का. अगर आप ड्राइव पे जा रहे हैं या फिर आप चाय पीने के लिए जा रहे हैं, जैसे हम कड़क कहते हैं प्यार से, या फिर सूख वाकिफ जा रहे हैं, और अगर आप घर पर बैठकर नेटफ्लिक्स एंड चिल करना चाहते हैं तो भी आई हैव सम आइडियाज फॉर यू. पर आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं. वीकेंड जो है वो ऑफिशियली कल ही स्टार्ट हो गया था, तो बात करते हैं कि भाई इस वीकेंड आपके और मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदा.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरेडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू।

सो कतर की बात करूँ तो कतर का जो टूरिज्म इंडस्ट्री है पिछले कुछ सालों में जिस स्पीड से ग्रो हुआ है वो काफी इंस्पायरिंग है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 एफएम, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम हैप्पी वीकेंड्स। और इसी ग्रोथ को सेलिब्रेट करने के लिए ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है कतर टूरिज्म अवार्ड 2026। अब आप सोच रहे होंगे कि अवार्ड ही तो है, लेकिन नहीं, ये अवार्ड उन लोगों को रिकॉग्नाइज करता है जो कतर की दुनिया के सामने एक मेमोरेबल डेस्टिनेशन उसे बनाते हैं। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, टूर ऑपरेटर्स, हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल, और इसी साल अगर मैं बात करूँ तो बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरीज भी ऐड हुई हैं। आउटस्टैंडिंग कतर व्लॉग ऑफ द ईयर, जी हाँ, आजकल लोग ट्रैवल ब्रोशर नहीं देखते, लोग इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं। ये तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। सोशल मीडिया ने नया टूरिज्म गाइड बनकर दिखाया है। और आपने कभी सोचा था कि एक 30 सेकंड की रील एक इंसान को इंस्पायर कर सकती है किसी कंट्री को या किसी जगह को विजिट करने के लिए? सनसेट वीडियोस, फूड ब्लॉग्स, हिडन कैफे रिकमेंडेशन, ना जाने क्या क्या। सो डेस्टिनेशन बकेट लिस्ट में आ रहा है कतर हर जगह पर, और कैटेगरी एक्चुअली डिजिटल क्रिएटर्स की पावर को रिकॉग्नाइज करती है। सो आई विल से कि आप क्या चूज करोगे कतर की एक जगह जब आपको दुनिया को दिखाना होगा, सूफा के या पर्ल या फिर कटारा या फिर कोई लुसेल या कोई और जगह, मैसेज करके जरूर बताना। नंबर है 3311063। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدنا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न।
3: अरे यार, हॉलिडे सीजन इज हियर, और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स, गोल्ड एंड समर के साथ आइए, फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस, प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर। विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन द GCC। विजिट मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।

So, अब बात करते हैं एक ऐसे ब्रांड की जो कतर का नाम दुनिया के हर कोने तक लेकर जाता है, कतर एयरवेज। सो एयरलाइन ने अनाउंस किया है कि वो अपना नेटवर्क जो है वो एक्सपेंड करते हुए 160 से ज्यादा डेस्टिनेशन सर्व करेगी। और ऑनेस्टली ये सिर्फ एविएशन न्यूज नहीं है, ये पूरी कनेक्टिविटी की कहानी है। सोचिए दोहा में बैठकर आप ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, मोरक्को, यूएसए और पता नहीं कितनी सारी कंट्रीज से कनेक्ट कर सकते हैं। एक एयरपोर्ट, एक हब और पूरी दुनिया। मुझे ट्रैवल के बारे में बस एक बात बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, हम अक्सर डेस्टिनेशन के बारे में एक्साइटेड होते हैं लेकिन ट्रैवल खुद ही एक एक्सपीरियंस होता है। एयरपोर्ट की एक्साइटमेंट, वो ड्यूटी फ्री की शॉपिंग, विंडो सीट, टेक ऑफ का मोमेंट और नए शहर की पहली हवा। और अब कतर एयरवेज ने स्टारलिंक इंटरनेट भी एक्सपेंड किया है, मतलब फ्यूचर का ट्रैवल और कनेक्टेड होने वाला है। वैसे अगर आपको भी वक्त इसी वक्त मतलब अगर फ्री रिटर्न टिकट मिल जाए तो आप को कोई नो बजट, नो वीजा वरीज, नो ऑफिस स्ट्रेस, नो यू नो नथिंग, बस आपको टिकट मिल जाए तो आप कहाँ जाओगे? मतलब टोक्यो, जापान, लंदन, न्यूयॉर्क, ऑकलैंड, पेरिस या कोई ऐसी जगह जो आप हमेशा से जाना चाहते हो? सो मैं अगर बात करूँ अपनी तो ऑनेस्टली मैं जापान जाना चाहूँगी। मुझे बहुत मन करता है कि मैं वहाँ पर जाके यू नो स्किन केयर शॉप करूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद के लाऊँ। और जापनीज आइटम तो सच में बहुत ही क्यूट होते हैं। सो अगर आपको एक जगह मिल जाए ऐसे रिटर्न टिकट तो आप कहाँ जाओगे? 3311106 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिस, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
1: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
2: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर, मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
1: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
3: Football boundaries नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता। इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया। अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया। नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। कल्चर ट्रैवल्स, फुटबॉल कनेक्ट्स एंड हिवारी इज ब्रिंगिंग कतर टू द वर्ल्ड।
4: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
5: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
4: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
5: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
4: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
6: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
7: Radio Olive par aane wala gana cool song of the hour.
8: Kya baat hai sir? Kya par ye baat hai?
9: Cool song.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: योर डेली सरप्राइज इज हियर. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरेडो ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो.
3: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस.
4: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर.
3: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में.
4: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस. बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए.
3: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026. दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.

सो लेट्स टॉक अबाउट फीफा वर्ल्ड कप 2026. भाई फुटबॉल और कतर का कनेक्शन अब सिर्फ 2022 तक लिमिटेड नहीं है. फीफा वर्ल्ड कप 2026 का एक्साइटमेंट पूरी दुनिया में बिल्ट हो रहा है और कतर में फुटबॉल फैंस की कमी तो वैसे भी कभी नहीं थी. अब सवाल यह है कि मैच कहाँ देखा जाए, घर पर या क्राउड के साथ? क्योंकि ऑनेस्टली फुटबॉल सिर्फ गेम तो है नहीं, फुटबॉल कलेक्टिव इमोशन है. आपने कभी नोटिस किया है कि 90 मिनट्स में स्ट्रेंजर्स दोस्त बन जाते हैं? एक गोल पर पूरा कैफे चिल्लाने लगता है, एक मिस पर पूरी ऑडियंस हाथ सर सब पकड़ लेती है. मतलब इस बार भी कतर के कई सारे फैन जोन्स, मॉल और स्पोर्ट्स कैफे फुटबॉल लवर्स का फेवरेट डेस्टिनेशन बन चुका है. मॉल ऑफ कतर, दोहा फेस्टिवल सिटी, स्पोर्ट्स लाउंजेस और फन स्क्रीनिंग एरियाज, यहाँ सब जगह स्क्रीनिंग चल रही है. और मुझे लगता है कि फुटबॉल का असली मजा ना क्राउड के साथ ही आता है. आपको याद है वो 2022, मतलब सबको याद है जिस दिन फुटबॉल स्टार्ट हुआ था, भाई सबकी स्टोरी में 2022 वाली फोटोज लगे होते हैं. वर्ल्ड कप का वो मोमेंट जब हर नेशनैलिटी के लोग एक ही जगह पर खड़े होकर फुटबॉल सेलिब्रेट कर रहे थे, वो एटमॉस्फेयर शायद फुटबॉल की सबसे खूबसूरत बात थी. तो आज का सवाल भी आपसे यही है कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो, या फिर आप सिर्फ फुटबॉल के फैन हैं? बताइए मुझे मैसेज करके 3311.

सो वीकेंड जो है वो आ गया है कल ही, और वीकेंड का एक परमानेंट मेंबर होता है विच इज ओटीटी. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम यस ऑफ कोर्स हैप्पी वीकेंड्स. पहले फ्राइडे को लोग सिनेमा हॉल जाते थे, आज फ्राइडे को रिमोट कंट्रोल उठाते हैं. और इस वीकेंड अगर मैं बात करूं, इस वीक पूरे मतलब एक्चुअली वीक की, तो ओटीटी पर काफी इंटरेस्टिंग कंटेंट आया था. लेकिन मैं आपको सिर्फ रिलीज नहीं देने वाली, मैं आपको बताऊंगी कि किस मूड में आप क्या देख सकते हो. और आप सस्पेंस और मिस्ट्री के अगर फैन हो तो दृश्यम 3 इस वीक का सबसे डिस्कस्ड टाइटल बना हुआ है. इस फ्रेंचाइजी की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ स्टोरी नहीं है, ये इंटेलिजेंस की स्टोरी है. कैसे एक ऑर्डिनरी इंसान एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन को हैंडल करता है, और इसी वजह से ऑडियंस इसे इतना ज्यादा कनेक्ट करती है. अगर आप पूरे हफ्ते ऑफिस स्ट्रेस में रहे हो, दिमाग को थोड़ा सा चैलेंज देना चाहते हो, तो सस्पेंस ऑफ कोर्स एक ग्रेट चॉइस हो सकती है. लेकिन अगर आप फैमिली के साथ देखना चाहते हो तो एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस. मूवी देखते वक्त सिर्फ स्टोरी मत देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कौन सा कैरेक्टर आपके जैसा है, कौन डिसीजन लेता है, कौन डिसीजन कौन से डिसीजन आप अवॉइड करते, कौन से आप लेते, क्योंकि अच्छी मूवी एंटरटेनमेंट से ज्यादा सेल्फ रिफ्लेक्शन देती है. सो आई विल से कि मूवीज के साथ साथ आपको थोड़ा सा डिस्कस भी करना चाहिए कि भाई यार ये मूवी में अगर आपने इसे बनाया होता या आप उस जगह पर होते तो क्या करते. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. मैं हूं मुस्कान और ये है हैप्पी वीक.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
1: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
2: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर, मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
1: ऑफर वैलिड टिल 30 June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टरकार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC apply। अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर ऑफर के साथ।
3: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश।
1: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप।
3: विजिट लुई फिलिप एंड वैन Houston stores in Old Airport Road or buy a spectacular offer.
0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

सो मैं ना आपसे एक चैलेंज करवाना चाहती हूँ, और ये चैलेंज सिर्फ इस वीकेंड के लिए नहीं है। चैलेंज ये है कि इस वीकेंड कुछ ऐसा करिए जो आपने पहले कभी नहीं किया। अब आप बोलोगे यार मुस्कान इतना इजी, लेकिन सोचिए हम अक्सर सेम प्लेसेस पे जाते हैं, सेम कैफे, सेम मॉल, सेम रूट, सेम रूटीन। हमें लगता है कि यार ये कंफर्टेबल है। मतलब जैसे मेरे घर के पास वकरा में एक मॉल है, तो मैं वहाँ चली जाती हूँ और मुझे लगता है कि यार सब कुछ तो है यहाँ पे। और फिर कंप्लेन करते हैं कि लाइफ बोरिंग हो गई है। लाइफ बोरिंग नहीं होती, रूटीन बोरिंग हो जाता है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और ये है हैप्पी वीकेंड्स। कतर में रहकर भी इतनी चीज़ें हैं जो हमने कभी एक्सप्लोर नहीं की। किसी ने कभी सनराइज नहीं देखा, किसी ने कभी किसी डेजर्ट में जाकर स्टार ऑब्जर्व नहीं किए, किसी ने कभी म्यूजियम विजिट नहीं किया, किसी ने कभी लोकल आर्ट एग्जीबिशंस नहीं देखी। इवन रिसर्च कहती है कि हम नया एक्सपीरियंस ट्राई करते हैं तो ब्रेन नए न्यूट्रल जो कनेक्शंस है वो बनाता है। मतलब साइंटिफिकली भी न्यू एक्सपीरियंसेस हमें हैप्पियर बनाते हैं। तो इस वीकेंड चैलेंज सिंपल है, एक नई जगह पर जाइए, कोई नया फूड ट्राई कीजिए, कोई नई एक्टिविटी कीजिए, बस एक चीज कीजिए। कतर में कौन सी जगह है जहां आप हमेशा जाना चाहते हो लेकिन अभी तक गए नहीं हो? 3311106 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
2: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। Visit Malabar Gold and Diamonds today.
3: Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
4: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
3: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
4: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
3: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
5: ग्रो योर ब्रांड अक्रॉस कतर्स की ऑडियंसेस। कनेक्ट विद हिंदी लिसनर्स ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मलयालम ऑडियंसेस ऑन रेडियो सुनो 91.7 FM एंड अरबिक लिसनर्स ऑन तत्काल 107.4 FM। ऑन एयर विजिबिलिटी सपोर्टेड बाय परफॉर्मेंस ड्रिवन डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स। सिंपल, इफेक्टिव, इंटीग्रेटेड। कॉल 3009-1063 और 3082-1063.

तो चलिए अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की। और ऑनेस्टली आज विमेंस क्रिकेट को इग्नोर करना ना इम्पॉसिबल हो गया है। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में इस वीक कुछ जबरदस्त परफॉर्मेंसेस देखने को मिली हैं। इंडिया ने पाकिस्तान को बहुत ही अच्छे से डिफीट किया। दीप्ति शर्मा ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, परफॉर्मेंस दी और क्रिकेट फैंस को याद दिला दिया कि टैलेंट भाई जेंडर नहीं देखता। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM। मैं हूं मुस्कान और शो का नाम हैप्पी वीकेंड्स। ऑस्ट्रेलिया ने भी बांग्लादेश के अगेंस्ट डोमिनेंट परफॉर्मेंस दी और दिखाया कि वो टूर्नामेंट की स्ट्रांगेस्ट टीम्स में से एक क्यों मानी जाती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि विमेंस क्रिकेट का जो ग्रोथ है आज से 10 साल पहले, इमेजिन कीजिए कितने लोग विमेंस क्रिकेट फॉलो करते थे, बिल्कुल भी नहीं यार। और आज स्टेडियम भरे हुए हैं, ब्रॉडकास्ट जो डील्स हैं वो बढ़ रही हैं, यंग गर्ल्स प्रोफेशनल क्रिकेट को करियर बनाना चाहती हैं। एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, जब बच्चे टीवी पर किसी को देखते हैं तो उनके जैसा यू नो बनना चाहते हैं, सपने देखने लगते हैं। और इस वर्ल्ड कप में भी कॉम्पिटिशन का लेवल बहुत आउटस्टैंडिंग है। सो आपकी फेवरेट वुमेन क्रिकेटर कौन है? स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर या फिर कोई और? बताइए मुझे 3311063 पर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
1: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
2: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर, मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
1: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
3: Football boundaries नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता। इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया। अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया। नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। कल्चर ट्रैवल्स, फुटबॉल कनेक्ट्स एंड हिवारी इज ब्रिंगिंग कतर टू द वर्ल्ड।

let's go towards future. You are listening Radio Olive 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है Happy Weekends. और फ्यूचर का नाम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि AI फ्यूचर नहीं रहा, AI प्रेजेंट बन चुका है. आज आप फोन यूज करते हैं AI, नेविगेशन यूज करते हैं AI, फोटोज एडिट करते हैं विद AI, म्यूजिक रिकमेंडेशंस मिलती हैं विद AI, शॉपिंग सजेशंस विद AI. हम अक्सर सोचते हैं कि AI रोबोट्स और साइंस फिक्शन वाली चीज है, लेकिन रियलिटी ये है कि AI एक्चुअली धीरे धीरे हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है. और मुझे लगता है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में बिगेस्ट स्किल कोडिंग नहीं होगी, बिगेस्ट स्किल होगी करेक्ट क्वेश्चन पूछना, क्योंकि AI आंसर दे सकता है, लेकिन राइट आंसर के लिए राइट क्वेश्चन आना जरूरी है भाई. सो मैं हमेशा बोलती हूँ कि टेक्नोलॉजी हमें रिप्लेस करे, उससे पहले टेक्नोलॉजी हम एम्पावर करें. और इसीलिए AI का फियर करने से ज्यादा समझना जरूरी है भाई. आजकल कितनी सारी क्लासेस आ गई, यू वोंट बिलीव. मैं 2-3 दिन पहले एक डिनर पर गई थी जहां पर मुझे एक 13 साल का बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा मिला. मैंने उससे पूछा कि आपकी हॉबीज क्या है. उसने मुझे बोला कि मुझे कोडिंग करना पसंद है. और उसमें भी वो इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेजेस के बारे में बात कर रहा था जो शायद मैं 18-20 साल की उम्र में भी नहीं सीखना चाहती थी या मुझे नहीं आता था. और फिर मुझे लगा कि भाई इससे बात करना तो बहुत डिफिकल्ट होगा, पहले गूगल से बात करनी पड़ेगी कि क्या क्वेश्चन पूछा जाए. फिर भी वो बच्चा इतना इंटेलिजेंट था कि मुझे सवाल पूछने में डर लग रहा था कि ये क्या जवाब देगा. सो आज के टाइम पे बस यही एक चीज़ है जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आप टाइम के साथ चलो तो आपको खुद को थोड़ा सा ना अपग्रेड तो करना पड़ेगा. बाय द वे यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. मैं हूँ मुस्कान. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: दोहा बैंक और लूलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस.
3: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लूलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लूलू शॉपिंग वाउचर.
2: लूलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लूलू पॉइंट्स के फॉर्म में.
3: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस. बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लूलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए.
2: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026. दोहा बैंक लूलू मास्टरकार्ड प्लैटिनम. शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग. टीएनसी अप्लाई.
4: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं. यहां हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है. यहां हर चोट एक मेडल है. हारना मना है और डरना गुना है. यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है. और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है. बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन. फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑलिव
5: इन एसोसिएशन विद.
6: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स.
7: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
6: योर ट्रस्टेड रिमिटेंस पार्टनर.

0: हर साल नए स्मार्टफोन्स लॉन्च होते हैं, बेटर कैमरा, बेटर प्रोसेसर और बेटर AI. लेकिन एक ऑनेस्ट क्वेश्चन ये है, क्या हमें वाकई नए फोन की जरूरत होती है या सिर्फ नया फोन चाहिए होता है? आज के फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स ऑलमोस्ट मिनी कंप्यूटर बन चुके हैं भाई. AI, फोटो एडिटिंग, लाइफ में जो भी जरूरत है आप वो से ले सकते हो. स्मार्ट असिस्टेंट हैं, प्रोफेशनल ग्रेड कैमराज हैं, मतलब हर चीज आपको मिल जाएगी. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है हैप्पी वीकेंड्स. अब कॉम्प्लिकेट नहीं कर रही हूं मैं, बस ये बता रही हूं कि लोग फोन खरीदते वक्त मेगापिक्सल्स देखते हैं. मैं एक और चीज देखती हूं कि क्या ये फोन आपके टाइम सेव करेगा, क्या ये प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करेगा, क्या ये आपको बेटर कनेक्टेड रखेगा, क्या क्यों आप बेस्ट फोन्स वो नहीं होते जो सबसे एक्सपेंसिव हो. बेस्ट फोन्स वो होते हैं जो आपकी लाइफ के हिसाब से फिट हो. तो बताइए आप कौन सी टीम से आते हो, एंड्रॉयड से या फिर टीम आईफोन से? बाय द वे, iOS और एंड्रॉयड वाली जो लड़ाई है ना, ये मैं सालों से देखती आ रही हूँ. इवन इन बेस्ट फ्रेंड्स, एक को एंड्रॉयड पसंद होता है, एक को iOS पसंद होता है, इवन इन पार्टनर्स भी ऐसा होता है. तो आप मुझे बताइए कि आप कौन सी टीम से आते हैं. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून और ये है हैप्पी वीकेंड्स.
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ऑलिव 106.3.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रख कर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
1: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
2: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर, मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
1: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।

0: ஓ பாட்டு தூடா.
1: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo

सो एक वक्त था जब कार चूज करते वक्त सिर्फ दो सवाल होते थे कि माइलेज कितना मिलेगा और मेंटेनेंस कितना है। आज एक नया सवाल आ गया है, भाई ये कौन सी कार है, इसका क्या इंटीरियर है, ये यू नो इलेक्ट्रिक है या पेट्रोल है। ईवी रिवॉल्यूशन दुनिया भर में कितना ज़्यादा स्पीड पकड़ रहा है और गल्फ रीजन में भी ट्रेंड का जो क्लोजली फॉलो है वो कर रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सिर्फ एनवायरमेंट के लिए नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के लिए भी एक्साइटिंग है। मतलब इंस्टेंट चीज़ें मिल जाती हैं, एक्सेलरेशन है उसमें, लोअर मेंटेनेंस है, स्मार्ट सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग डिबेट ये भी चल रही है कि क्या ईवी फ्यूचर है या हाइब्रिड फ्यूचर में आएगा। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम ऑफ कोर्स हैप्पी वीकेंड्स। मुझे लगता है आंसर ना टेक्नोलॉजी से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में छुपा हुआ है। जितना चार्जिंग नेटवर्क ग्रो करेगा उतनी ईवी अडॉप्शन बढ़ेगी और आने वाले कुछ सालों में ट्रांसपोर्टेशन का जो लैंडस्केप है कम्प्लीटली चेंज हो सकता है। सो अगर आपको एक लग्जरी ईवी मिले तो क्या आप स्विच करोगे, वो भी बहुत कम प्राइस में? लेट मी नो। 3311063 इज माई व्हाट्सएप नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: आपसे एक बड़ा ही डीप थॉट शेयर करती हूँ। हम पूरे हफ्ते ना दो दिन का इंतजार करते हैं, वो है वीकेंड के फ्राइडे एंड सैटरडे, और फिर वीकेंड इतनी जल्दी खत्म हो जाता है कि मंडे आ जाता है, और मतलब ऐसा लगता है कि यार अभी तो फ्राइडे सैटरडे निकला था, संडे भी निकल गया, और संडे को तो काम में मन लगता नहीं है, फिर मंडे आ जाता है। लेकिन शायद प्रॉब्लम वीकेंड से नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम वीकडेज जीना भूल जाते हैं भाई। हम फ्राइडे का वेट करते हैं, वेकेशंस का वेट करते हैं, फेस्टिव का वेट करते हैं, और बीच में नॉर्मल दिन मिस कर देते हैं। सो यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान, और शो का नाम है हैप्पी वीकेंड्स। लाइफ में एक्चुअली स्पेशल ओकेजंस में नहीं होती, लाइफ ऑर्डिनरी मोमेंट्स में होती है। आज किसी दोस्त का मैसेज आया, आज की चाय, आज का सनसेट, आज की एक अच्छी सी कॉन्वर्सेशन, और अगर हम इस मोमेंट को अप्रिशिएट करना सीख जाएं तो शायद हर दिन थोड़ा सा वीकेंड जैसा लगेगा आफ्टर योर ऑफिस। सोच के देखिए, आपकी लाइफ का हैप्पीएस्ट मेमोरी कौन सी होती है? क्या वो किसी एक्सपेंसिव चीज से जुड़ी है? ऑफ कोर्स नॉट। किसी सिंपल मोमेंट से? यस, मुझे लगता है कि आंसर बहुत ही सिंपल होगा, और यू नो द आंसर राइट? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, और मुझे लगता है कि वी शुड एक्चुअली यू नो वाइजली डू आर वीकेंड थिंग्स, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वीकेंड तो भाई मतलब सिर्फ और सिर्फ ये घूमने के लिए है या दोस्तों के साथ जाने के लिए है। नहीं, बट वीकेंड है एक्चुअली आराम से बैठने के लिए, पीसफुली जीने के लिए। सो वी विल टॉक अबाउट दैट कि आप इस वीकेंड पे क्या क्या कर रहे हैं और मेरे क्या प्लान्स हैं। सो सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
3: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
2: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
3: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफ स्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर, मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
2: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टरकार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। टीएनसी अप्लाई।
4: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं, वॉरियर कहलाते हैं। यहां हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहां हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुना है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। FIFA की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑलिव
5: इन एसोसिएशन विद।
2: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
6: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
2: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर।
7: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
8: बात है सर, क्या पर ये बात है।
9: Cool song.

वैसे तो वीकेंड का एक अच्छा खासा हिस्सा निकल चुका है. फ्राइडे इज ऑलमोस्ट यू नो ओवर. अब बस थोड़ा सा ही टाइम बचा और उसके बाद गिनेगा कल का दिन यानी कि सैटरडे. किसी का हाफ डे, किसी का फुल डे ऑफ. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है हैप्पी वीकेंड्स. तो दोस्तों आज के शो का वक्त यहीं तक था. हमने ट्रैवल की बात की, फुटबॉल की बात की, टेक्नोलॉजी की बात की, क्रिकेट की बात की और लाइफ की भी बात की. लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि वीकेंड का पर्पस सिर्फ रेस्ट करना नहीं होता, वीकेंड का पर्पस रिचार्ज होना होता है. और रिचार्ज सिर्फ सोने से नहीं होता, कभी फैमिली से होता है, कभी दोस्तों से, कभी अच्छी किताब से, कभी एक लॉन्ग ड्राइव से. सो किसी वीकेंड सिर्फ प्लान मत बनाइए, यादें बनाइए. क्योंकि यू नो ये अगला जो वीक है ये संडे से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इस वीकेंड की स्टोरीज शायद बहुत देर तक साथ रहेंगी. मैं हूं मुस्कान. आप सबका बहुत बहुत थैंक यू इतने सारे मैसेजेस करने के लिए. अपना ख्याल रखिए और जो थोड़ा सा बचा हुआ फ्राइडे है उसे एंजॉय कीजिए. सुनते रहिए रेडियो ऑल 106.3 FM. कल मिलेंगे ऑफकोर्स रात को मिडनाइट लाउंज लेकर. तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
3: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
2: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
3: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर, मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
2: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
4: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ free data या minutes का surprise. Claim करो Ooredoo app पर. Experience more with Ooredoo.
5: अब सुनिए Olive का जबरदस्त है.
6: अभी बजाएगा ना भिड़ो.
7: You are listening to Radio Olive. 106.3 FM.

0: दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफ स्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।
2: Radio Olive 106.3 FM. You're listening to Club

0: सूरत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: Radio on 106.3 FM.

0: तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ
2: Yeah. This one comes straight from under the dancer.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM।